काफिर मी होंगे खबर त्यबा मी हुन्ना हमय करना दे ये फाहे एवरेन कुड़ा खंताउगे नुबा नथी जागे रहा एवरेन लिबगत हुए आदि एवरेन वेन दिन आजाब होते।

ए नरक अन्न रुलिंग खुदी खुदी वेदांग खैर वेदे खा फिर फौजिंग ए नरक एल्लावा कुम में फहरब इतांगे बंडेरिंग एवरना सवाल कुरबान थे इंजार कुरबा रसूल ते बी हिंग गात वडे नुगन वाहिजे।

विरवाश आदित्य बैमी हूँ आहाश आदित्य बैमी हूँ क्यमम वाश आदित्य बैमी हूँ हे दुराश त्य बैमी हूँ गे अमिल्ल नफ्तक एग हे हुकम बोडवेगम वे आदि एमी हेगे अमिल्ल नफ्सुगे दहिवेदकम मिंजु वेज्ज मीहा दन्नाश फहे एवरनी हम दिन्नवा ने मी हूँ ने।

ए रर्रशगे अहुलवेरिंग एवरेंगे वेरिरस्कलांगे अमरुफ्लाशाय एकलांगे रसूलुन्ना नुकियमन थेरवी कितक कितर रंग हिये फाहे तिमन रस्कलांगे एवरेन्ना मेदुगा गदवेगिंवा हिसाबकुं हिसाबु बल्लवा बिरुवेरी अजाब।

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namadaki in amatang agulmen ada kurmuga farwatirumga sobun madama qiyamid duhun agulmenna emme bodu kamiyabi libigendane amal namada behigutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam agulmenna bayan kuddivani alage amal toge teren ena kuffawa kankamuge teren emme furtama qiyamid duhun hisabillewe hushi namada behigutunne ए नमादु के हिसाब और अंगलों वेज़ कम अव्वान हमा ए नया कामयाब वे फलाहुली भिज्जे माने कि स्वर्ग के गहुले रिकमगा ए ना वेगिं हिंगेज़ ए नमादुं मुनीवे मधु वेज़ कम अव्वान हमा नोता ए नमादु हिसाब करेवे इरुगा ए नमादु

0: ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ಸಂಗಾಫನ್ ಎಕ್ಕೊಂಡಿತಿರುಮ ರಹಮ ಕುರ್ಮ ಓಗಾ ತಿರುಮ ಎಕ್ವರಿನ ಎಕ್ಕೊಂಗುಳೆ ಮೆಹಂಗ ಫರಾತು ನಫೂಸ್ ತ ಮೀ ಮಿ ಹಫ್ತಾ ಕ್ರಮ ಬಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಒಯ್ ಮಾಲುವಕಿ ಮೀ ಮಾಲುಗ ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಳು ಮೆನ್ನ ಮಾಲು ಮತ್ತೆ ಮಟ್ಟಕ ಬ್ಯಾರ ವಡಾಂತ ಬನಿ ಅಶ್ರೇ ಅಹಮದ್ ಕುಮೈಲ್ ಅದಿ ಅಶ್ರೇ ಶುಭೆಬ್ ನಾಸಿ ইসলামী তারবিয়ত প্রোগ্রাম আডো সোম কিন্তু এমহে আহতেরনা মারহাবা দন্না আদে মে হফতাক প্রোগ্রাম গ আলগন মে বিবাহক দকালং ওই মাওলুগ ফরতাম আলগন মে গে হামা মে নজওয়ানু গে খিয়াল হরিগ আলগন ফরতাম বালাদানি মি একুয়েরিন এককং উলে মে হং ফরাতুং আন্না নফুস দ একুয়েরিন নাকি মতে গাম মি হুন নাকি কো ব্যাক আতি কো দিন দকে রাউন্ড
1: ফেন্ন গতুগ একুয়েরিন গে ফরাতুং এম বড নফুস ফোরা কামাকা আরমেন্ড অফ ফর মি অন্ডনি আরমেন্ড আমিল্লা গোয়েননি মুমুগ একুদিন গে খিয়াদা কাঙ্কামুগ মাশওয়ারা হোদায়র একুদিন না মাবড় ভরসা রেতি একুদিন গে ফারাতো এন ফুস্তা কুড়িমাতি ওয়া কুড়িমাতি
2: আনি হিম পুরানা মিসালক বাই ফর ওয়ার মুহিম কামাক আমিল্লা গোয়েননি মুঞ্জে কামাক একুরিং গে গোয়েননি মুম তাবা ফা আমিল্লা সেলফ আইডেন্টিটি গেল্লে বাই ফর মানে মিনিম মা গোতেক গে সবাব পিয়ার প্রেসার ভেটনি মিসালক একুরিন দেখে গোম মা রাঙ্গালে হিতং আরাফা আনি হে রাঙ্গাল গোতেন নো নো ব্যাগ গোতেন নো মিয়েবেস নো বালা একুরিন বুনা এচক বিষ্ণা গোন নিমন এই কারণে গাস্তু মিহার দিমাওয়া বড় নো ফুজকি
0: কোব ইবা কোন কাল নো ফুজতকে মি রাটে হিননা একুলে মং ফরাত মিহার মিকু দিননা কুরমতি বনে ইবা দেখে গতো ইবা দেখে গতো রাটে হিননা কি আসু কোবা
3: রাটে হিননা কি একু গোলে কোদি ইং আলুগণ এমি হোনা এপাস ওয়ানজেহে তো এহসাস করে
0: ওয়ানজেহে তো
3: নয় জেহে একমে এহসাস করে
0: ওয়ানজেহে কমন্দ
3: লাপ
0: চেদল লুট দিমাগে তো
2: একা কঙ্কমে সন্নানা ক্লাস তেরে স্কুল দোস রুলুং ইরু তো
0: এমি আর মিহার দেন তোলনে ওয়াজিফা গলো ওয়াজিফা মা হল কি রে বনি
2: ওয়াজিফা গে মা হল গানে হি ইননানি মাসেকে কুরা মিহায়া আলুগণ দে তেরে নেচ্চতা দেন ವಾಜೀಫಾಗೆ ಮಹಲ ಆದಿಮಿ ವಣಿ ದೆ ಮಿಹಾರ ಬದನಿ ರಟ್ಟೆ ಹಿಂಗ ಕಮಂಗ ದೆನ್ ವಾಜೀಫಾಗೆ ಮಹಲ್ಗ ವಜ್ಜಿಯ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಿಣ್ಣ ದೆನ್ ವಾಜೀಫಾಗೆ ಮಹಲುಗ ಎಣ್ಣ ರೂಹ ಎಕಿ ದೆನ್ ದೆಮಿ ಹೆ ಹಮ ಇಬಾ ಎಬುಣಾ ಹೆಂಗ್ ದೆಹಿಯಾಲೆಂಗ್ ಆಸ್ ದಣ ದೆನ್ ಎ ದೆಹಿಯಾಲುಗ ಸಾಬು ಎಣ್ಣ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಣ್ಣ ನಣೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ವಕಿ ಪಿಯಾ ಪ್ರಶಾಗೆ ಸಾಬು ವಕಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಮೇಕುರಾಕ ಬಾರನ್ನಾಳನ ವಜೀಫಾಗೆ ದಾಯಿರಾ
0: ವಜೀಫಾಗೆ ದಾಯಿರಾ ನಂಬನೆ ವಜೀಫಾಗೆ ಮಾಹುಲ್ ಗಸ್ತಿ ಬೇನೆತ ಎಕ್ಕೊಂ ಉಳೆ ಮೀ ಹುನ್ನಾದ ಎಕಾಲ್ ಎಕ್ಕೊಂ ಅದಿ ರಟ್ಟೆ ಹಿನ್ನ ಎಕ್ಕೊಂ ಉಳೆ ಮೀ ಹುನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಾತ ಬಯನ್ನ ಮಿ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀ ಹುಂಗ ಫರಾತು ಮೆ ಸೆಬ್ಬೆಸ್ ಕಹಲ ಮಿ ಉಂದಗೂ ಮಜಬೂರಿ ಎಕಹಲ ಕಿಹಿನೆ ಹೆ ಎಕಹಲ್ ಕಂತ ತಜರಿಬಾ ಕೊರೆವೆ
2: ಅಣೆ ಹೆಂ ಬೈಫಾರು ಮಿಸಾಲ್ಕ ವಜೀಫಾಗೆ ಮಾಹುಲ್ ದತಿ ವಿಸ್ನನ್ ವಿಸ್ನನ್ಯಾಮು ಅಲ ವಜೀಫಾ ಕ ವಣಿ ತಜರಿಬಾಕಾರ ಬ್ಯಾವರ್ ಮೇಹಂ ಎಬ ತಿಬಿ ವಜೀಫಾ ಗಂಗಿ ದೆಂಗ್ ಮಿಸಾಲಕ ಲೋತ್ ಮಿಣಗಣಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನಗಾಯರು ಅಲವಣ್ಣ ಮಿಹೆ ವೆಜ್ಜಿಯ ಲೋತಂ ಉದಗುವಣ ಡಿಸಿಷನ್ ನಗಂ ಎಹ ಬ್ಯಾವರ್ ಮೇಹಂ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ದೆಕೊಳಿಯ ಏಗೆ ಸವಬಂ ಬೈಫಾರು ದಿಮಾವೆ ಲೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ವಾರು